0: गोली, बोल बचन की वाणी
1: शाणी,
0: बोल बचन का कतरा
1: पतरा,
0: बोल बचन की भाषा
1: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता।
1: हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा।
2: Yeah, you talking not right, and body pain from toe truck to headlight.

0: जी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं
1: होता। गड़ेगड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रैपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड